0: दगड़ियों, जन मैं आपते वादा करी छो कि मैं आज एक विशेष मेहमान का साथ आपकी दगड़ी रूबरू होनू छो। तो मेरा मेहमान छन आज श्री मनोज भंडारी जी, जो भारत बिटिन सीधा जुड़ना छन हमारी दगड़ी। तो स्वागत कर दो उनको। भंडारी जी, बहुत बहुत स्वागत आपको हमारा आकाशवाणी एडलेट पर।
1: विश जी नमस्कार, और मेरा दाना सयाणा को नमस्कार। दीदा भुला दीदी भुली सभी को मेरे प्यार जो भी सुनने वाला, और बहुत बहुत धन्यवाद विश जी, आपन मैं आमंत्रण भेजी और मैं यख आयो। बहुत बहुत धन्यवाद
0: नहर जी। मैं तो खैरा सोशल मीडिया में आपका बारे में देख दो रोनो थोड़ा आप पता भी छह, पर मैं चाहूँ कि आप अपना मुखार बिंदु से जरा हमारा श्रोतों ते बताओ कि आपकी शिक्षा दीक्षा कख हुए और वक बटिन दिल्ली आनो को रास्ता कने आप ते मिली।
1: तो दीदा बोलो दीदी बोलो दगड़ियों, मेरे गांव को नौ छड़ेरा और यू पड़ो खास पट्टी टेरे गढ़वाल में उत्तराखंड। बिल्कुल आपन सिद्ध पीठ चंद्र बदनी माँ को नौ सुने बोलू। बिल्कुल तख नीस जामनी खाल और रोड़दार छे, एक नीस छे गांव छड़ेरा है ना। तो तख बटी मैं बिलोंग कर दू, और मेरी सब मतलब शिक्षा वगैरह एजुकेशन वगैरह सब वो की बिटी हुए, और दसवीं में रोड़दार बिट करी। रोड़दार मा वो बरी साइंस नहीं दिया उबरी, तो दसवीं करने के बाद मैं पौड़ीखाल चल गया है ना। किला की सब भी हमारा दगड़े मतलब सब पौड़ी जान लगे पौड़ीखाल में। वक्त साइंस दिया वक्त प्राइवेट मास्टर पढ़ाता उबरी साइंस, तो साइंस आइड लिया तो सभी तो हम भी वक्त चल गए। तो 1996 में मैंने बारहवीं कर तक बिटी, और चलती फिर दी मतलब तब हमने सोची यार चला मतलब कि थोड़ा सा अब कुछ काम वाम करो है ना। वो बरी दिल्ली को बहुत वो हम तो नौ हम तक यार जो दिल्ली जानू मतलब तो वो एकदम सेठ बनी गो मतलब है ना, रुपये की कमी ना है ना दिल्ली में। तो वो मेरे देहरादून भी हम गए बहुत बड़े लोग थे बारहवीं करने के बाद, पहले तो देहरादून है एक दो महीना वक्त घूमे है ना। तो देहरादून वो मेरी बिजा दूर लगो तो खैर अब तो सुबह नो जार ब्याह वापस आ सकता तू ऋषिकेश देहरादून। अगर वो मेरे वो टाइम पर ऋषिकेश जान लगो तो यार कहे ऋषिकेश गए थे तू, अरे देहरादून गए थे। तो किला की वो मेरे टाइम पर हमारा टीर बाजार हों है ना, तो टीर तो वहां बात डूब गया। तो सब हमारा जो भी कार्यक्रम होंगे जो भी चीज होंगे टीरी भी संभाल लो है ना। तो हमने सोचा यार चलो दिल्ली जाओ, दिल्ली को थोड़ा कुछ वक्त दिल्ली की हवा खाओ मतलब वो वक्त थोड़ा कुछ काम धंधा कर ला और कुछ पैसे टाइप कमा ला है ना। तो यू रहे मतलब हमारो एजुकेशन वगैरह वगैरह बेटी गौर बेटी।

0: बहुत सुंदर भंडारी जी। भंडारी जी, मैं जब तक आपका बारे में जानकारी मिली कि मैं पता चली कि आप पहले होटल इंडस्ट्री में छा जाना और अचानक आप ही फिटनेस का फील्ड में आए, जैमा आपन बहुत अच्छा मुकाम हासिल करेली। अपना लोगों ते आप स्वास्थ्य का बारे में बहुत अच्छी टिप्स छन देना, जो बहुत सिंपल होने, जो हमारा गाँव में और उत्तराखंड में सब चीज जो उपलब्ध रहने वही पर आप ऊते डाइट प्लान और ऊके जो भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी रहने वही चीजों ते आप अपना मीडिया का माध्यम से बताना, तो जरा हमारा स्रोतों ते जरा विस्तृत जानकारी दियो के बारे में।
1: जी बीश जी, बिल्कुल आपन सही सुनी। और जब मैं दिल्ली आया हूँ तो दिल्ली सबसे पहले हमारे क्या था कि भाई पहले होटल लाइन में काम कर, होटल में सिकन काम हो, और वो भी हमारा दीदा बुला दी जब सब भी मतलब बहरा देश जानते तो यक था पैसे नहीं तो सब सोचते यार जो बहर चल जा लो तो बहरा देश मतलब खूब पैसे कमाए गए या सेठ बनी गए जो है ना। तो हमने भी सोची चला हम भी दिल्ली चल रहा, तो दिल्ली की तरफ हम आए और 5-6 महीने तक काम भी नहीं मिली कहला कि वो भी यंत्र तो दिमाग में कि काम सीखण। अब काम सीखण नौ जख है ना, तो वक्त सब दानी मतलब तब सब बोला नहीं कि यार कि काम यंत काम है सीखण है ना। तो यन हमारे दिमाग में वो निरंतर यार हम नौकरी करेंगे काम सीखला भाई यन तो है काम सीखण मतलब। तो काम सीखण और काम करने में अलग हूं है ना। तो दिल्ली आयो 4-5 महीने तक तो कुछ काम ही नहीं मिल गई, तो बड़ी मुश्किल से एक जगह मैंने शुरुआत करी साकेत में। साकेत में एक रेस्टोरेंट हो तो ससुराल रेस्टोरेंट है ना, तो तक हमारा जरोला का मतलब गाँव का इधर शिरकवाटा का खारियों मतलब बागड़ियों तोली तोली का काफी तन मतलब है ना। तो तक मैंने कहने लगा तो मैं नौकरी पर अब तक मैंने पहली शुरू करी मतलब, तो शुरू करी होटल लाइन में और कर दो तक काम भी पहले कर करी काम सीखना वजह से बोलते 6 महीने तक तो बल तनख्वाह नहीं मिली, 6-7 महीने तक एक लाल पैसे नहीं दिन दोनों में तनख्वाह काम है बोल तू सीखनी। तो मैं चलो ठीक है भाई है ना, काम सीखी सीखी गई तक। और वहां के बाद फिर जब काम सीख गया तो कम से कम 2 साल तक की काम करे, 6-7 महीने बाद तो 700 या 800 रुपये तनख्वाह दी दिया। ये बात मैं बतौनी छो आप गई 97 की बात बतौनी 97 की है ना। तो 7-8 महीने बाद तक बैठे हम होटलों काम करी गए और वहां के बाद सीखी गए। और 2 साल बाद मैंने दूसरी जगह ट्रायल देनी ग्रीन पार्क में एक होटल होता और मेरे गए एक और दगड़े तो मेरू विनोद चौहान था, तो हम दुयों तक ट्रायल देनी और तक हम नौकरी मिली तक तनख्वाह भी बढ़िया होगी एकदम बिल्कुल 4,000 रुपया तनख्वाह से ध्यान लगे हम गए। तो जय दौरान जब मैं ग्रीन पार्क काम तो करनी हूँ तय दौरान मैं मॉडलिंग भी करी मैंने एक आध साल एकदम तक काम कर दू तो तक कोई मैं मिल तो बाठ हम ऑटो में तो जानी और मैं पैदल तो जानी हूँ तो कोई जर्नलिस्ट तो मतलब जो फोटोग्राफर वगैरह होता जन फैशन वगैरह की फोटोग्राफी कर देने कहे इंटरव्यू लिया कुछ लिया है ना। तो वेन मैं देखियो और वेन बोली यार यू तो नौनियाल खोवा मतलब छोड़ छोड़ है ना पतुल तो छे तो लंबू 6 फुट हाइट था अंडर वेट तो मतलब वजन मेरे ज्यादा नहीं तो पतुल तो बिल्कुल जन न्यून मतलब छतरो सी लाट हुआ नहीं तो मैं। तो वेन मैं कार्ड वार्ड देनी और कार्ड वार्ड दी गई बोली भैया खे जान कनॉट प्लेस, तो कनॉट प्लेस गए हो तो वक्त भी थोड़ा बहुत हमने सीखी काम कर दी होटल दगड़ा दगड़ा बीच में वक्त जानता हूँ तो थोड़ा बहुत मॉडलिंग भी करी है मैंने है ना। तो बस यू ही रहे मतलब वो को हिसाब किताब मॉडलिंगों को और होटलों को। वहाँ के बाद जब मॉडलिंग भी करी तो मॉडलिंग के बाद 2-3 साल करी मैं थोड़ा बहुत काम करी और ठीक ठाक काम करी मतलब जन मैगजीन वगैरह का शूट करता हूँ न्यूज पेपर आ गए कोई जन मतलब एड करते कहने तो वो भी कराता हूँ दिल्ली में। तो दिल्ली में ज्यादा स्कोप नहीं था मतलब मॉडलिंग है ना, तो जो वीडियो वीडियो बने मतलब जो एड फिल्म वगैरह वो बॉम्बे में ज्यादा, तो मैं बॉम्बे भी गए वक्त। तो बॉम्बे जब गए तो एकदम काम दो वक्त मीन नहीं था वक्त जिम में नौकरी करी। जब मैं यहाँ दिल्ली में तो हूँ तो दगड़े दगड़े मैं मॉडलिंग गए जिम भी करता हूँ तो छू भी एक मतलब एक तो एक नशा भी लगी मतलब जिमों की यार यू भी बढ़िया चीज है ये तो मतलब शरीर ठीक है ना एकदम बिल्कुल तड़ तुड़ छुवाणी शरीर जन जिम करेगा होना था और वहां बाद ठीक लगो तो मतलब और थोड़ा थोड़ा शरीर में मतलब फर्क पड़ने लग जाता है जब 5-6 महीने जिम करी यार ये तो ठीक चीज है मतलब है ना। तो जिम कर दो तो जिम की नौकरी करी बॉम्बे में, बॉम्बे गए वक्त और बॉम्बे में जिम की नौकरी करी दगड़ा दगड़ा मॉडलिंग भी करी तो फिटनेस को शौक मतलब तक भी चढ़ गई यार अभी तो फिटनेस बहुत बढ़िया चीज है। हालांकि मैं बॉम्बे में 2 साल रहे हूँ काम वाम थोड़ा बहुत मिलता था लेकिन खर्चा पर्चा ज्यादा होता वक्त। तो आप लोगों का तो पता ही है मतलब कि हमारे जैसा गढ़वाल मतलब जो भी मतलब ये था वही टाइम पर पैसा भी नहीं होता माँ बैबुओं में कबर तक पैसे ले आते है ना, हम यक बैर कमाना है या वो मांगना है तो आप रहे खर्चा पर्चा ना मॉल्डिंग भी करता हूँ राउंड में यार बॉम्बे बहुत वन जगह एक्सपेंसिव जगह है मतलब वक्त बिल्कुल बहुत महंगाई है ना राणू राण बहुत ज्यादा वो कठिन मतलब वक्त बिचार पैसा पड़न किराए वक अगर कहन फ्लैट लेने कुछ लेने ना 2 साल काटन काटन और तब ज्यादा काम भी नहीं मिली वक यार मैं चला दिल्ली चल रहा हूँ वापस है ना। और फिर मैं दिल्ली आया हूँ तो दिल्ली भी फिर मैं यख जिम्मा नौकरी लगी मैं फिर।

0: चलो भेजी हम भी छनौना पूरा परिवार से छनौना
1: अरे पानी ये पान कर छनौना
0: सब सब छनौना
1: अरे नौना तुम चले जाओ चले भाई हां कौन जन की नहीं छनौना
2: हे नंदा।